0: गिराक बराबर की जगह जाता हूँ
1: कमी नहीं करती पैसे तोड़ के
2: Van Listenay, Bruxelles, Belgium, Plein, Bisson, rue Capouillet 15, 1060 Saint-Gilles, Belgique. Applaudissements coronavirus COVID-19, Flavien Gillier.